0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

0: मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर आरजे अदनान तुमच्या सोबत आला इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. तर आपण दर दिवशी ना एक छोटीशी गोष्ट ऐकतो स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनावर आधारित, कारण की आपल्याला त्यांच्याकडून काहीतरी शिकायला मिळेल. सो एक बार स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे टहल रहे थे. वहां उन्होंने देखा कुछ लोग नदी के किनारे बैठकर मछलियों को पकड़ रहे हैं. उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये लोग क्या कर रहे हैं? स्वामी जी बोले, ये लोग अपने पेट के लिए मछलियों को मार रहे हैं. फिर वो आगे चले और देखा एक जगह बकरी घास चर रही थी और कुछ बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे. फिर से उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव ये क्यों? स्वामी जी ने कहा, मनुष्य जिस पर जोर चलता है उसे ही सताता है. फिर आखिरी में उन्होंने एक बात कही, जब तक तुम दूसरों के दुख को अपना नहीं मानोगे तब तक इंसान बनने का पहला कदम भी नहीं उठाओगे. तो मेरे यारों दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, उठो जगो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो. ये सिर्फ शब्द नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका है. सो बात याद रखिए और अपने कमजोर पर जोर चलाकर कोई फायदा नहीं, बराबरी वालों से दोहात करने में ही मजा है. दोहात का मतलब वैसा नहीं जो आप सोच रहे हो, अपने काम के जरिए, अपने जज्बात के जरिए. तो ये बात याद रखिएगा और स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा और बाकी तो सुनते रहिएगा आरजे अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

0: ऑन MGM 90.8 FM। गिफ्ट जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन इतने आसानी से कोई भी चीज जिंदगी में नहीं मिलती। उसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करना पड़ेगी। सो मेहनत के लिए ना तो एक पहेली का आपको जवाब देना पड़ेगा।
1: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: तो पहेली सुनिएगा कि एक ऐसी चीज जो जितनी बढ़ती है उतनी ही घटती है। ना इसे देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन सबके पास होती है। बताओ ये क्या चीज है। समझिए आपको पहली, एक ऐसी चीज जो जितनी बढ़ती है उतनी ही घटती है। ना इसे देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन सबके पास होती है। तो बताओ ये क्या है। सो पहली आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले जवाब देने वाले को हम लकी विनर घोषित करेंगे और उसको एक स्पेशल इनाम भी मिलेगा। सो जल्दी कीजिएगा DM ऑन इंस्टा RJ अदनान और व्हाट्सएप 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना जवाब दीजिएगा और ये लकी विनर वाला गिफ्ट जीतेगा। बताइए क्या पहली है और इसका जवाब क्या है। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उस पर गौर करते हैं क्या? आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM और इसी पर बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ को वेल रखने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, HOD MGM साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। सो मैम, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि क्या मेडिटेशन, एक्सरसाइज या ब्रीथिंग टेक्निक कॉर्पोरेट स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकती है क्या?
1: देखिए, बिल्कुल हेल्प कर सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है इट्स एज गुड एज मैजिक पिल, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे जो एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज होते हैं, और ये एंडोर्फिन्स जो है ये नेचुरल स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल मतलब मैजिक पिल की तरह काम करेगा। डीप ब्रीदिंग जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत काम डाउन करता है। तो अगर हम मान लीजिए 7 डीप ब्रेथ्स ले ले, है ना, एंड इवन आई रेकमेंड टू एवरीवन हियर कि आफ्टर से एवरी 2 आवर्स अगर हम ये 7 डीप ब्रीदिंग साइकिल्स कर ले, सो इससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई भी सही होता है और फिर हमारा मूड भी सही हो जाता है, प्लस हमारी नर्वस सिस्टम भी काम डाउन होती है। सो द सेकेंड मैजिकल टेक्निक इज डीप ब्रीदिंग फॉर श्योर। एंड तीसरा है कि जैसे 5 मिनट हमको हर 1.5 घंटे के बाद जो ब्रेक लेना है, एक ग्लास पानी पीना है बैठ के और फिर थोड़ा सा वॉक कर लेना है 2-3 मिनट, इससे हमारा मूड बदल सकता है, मूड इम्प्रूव हो सकता है। थोड़ा खिड़की में जाइए, खिड़की से बाहर देखिए, तब फोन हाथ में मत लीजिए। तो ये 3 चीजें तो डेफिनेटली पॉजिटिवली बिल्कुल हेल्पफुल है।
0: तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज या फिर ऐसे गहरी सांस लेना और छोड़ना, ये सब चीजें आपने फॉलो की तो आपका जो स्ट्रेस है जो कॉर्पोरेट लाइफ की वजह से आता है वो कम हो सकता है। तो ये बात याद रखिए, मेंटल हेल्थ को वेल रखिए और सुनते रहिए।

वक्त हो गया है आज के एक बेहतरीन गाने का किस्सा जानने का। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM और गानों की किस्मों में आज हम जानेंगे इस गाने के बारे में।

0: उदास।
1: ब्रह्मचारी इस फिल्म से गाना है। मोहम्मद रफी और शमी कपूर जी की दोस्ती काफी गहरी थी। वही शमी कपूर अपने फिल्मों और गानों को लेकर काफी सोच विचार करते थे, गाना कैसी फिल्माया जाएगा, कौन गाएगा और बहुत कुछ। ऐसे ही ना तो मोहम्मद रफी साहब का एक लोकप्रिय गाना था दिल के झरोखों में, जिसे शमी कपूर पर फिल्माया गया था। उसके लिए शमी जी ने रफी साहब के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि रफी अगर एक सांस में वो इस गाने का मुखड़ा और अंतरा गा लेंगे तो उनके लिए तारीफों के पुल बन जाएंगे। ये गाना काफी मुश्किल था, लेकिन जब रफी साहब ने इसकी रिकॉर्डिंग की तो हर कोई हैरान हो गया। रफी साहब ने इस गाने को एक टेक में रिकॉर्ड किया था, बस फिर क्या। आज भी ये गाना एक क्लासिक हिट है और ये गाना सुनने के बाद समझ में आता है कि कितने लेजेंडरी सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब। इतना मुश्किल गाना बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। तो चलिए फिर यही गाना अब हम एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ब्रह्मचारी इस फिल्म से। ऐसे ही गानों के किस्से हम हर दिन जानेंगे अपने इस शो में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

यार एक बात बताना, अगर किसी को बोला जाए कि थोड़ी तकलीफ उठा लो, बाद में फायदा ही होगा, और फिर एक साल तक कोई फायदा नजर नहीं आए तो गुस्सा तो आएगा ना। फिलहाल अपने शहर में ये सब चालू है। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम एंड छत्रपति संभाजीनगर में भी ऐसे कुछ हाल हो चुके हैं। पिछले साल ना तो शहर के 5 बड़े रास्तों से बहुत बड़ा सा अतिक्रमण हटाया गया था, हम सभी को पता है। फिर लोगों ने सोचा था कि यार अब ट्रैफिक से हमें मुक्ति मिलेगी और अब हम आजाद तरीके से गाड़ी चलाएंगे विदाउट किसी हेजिटेशन के। लेकिन अब एक साल हो गया है और रोड बड़ा करने का काम अब तक शुरू हुआ ही नहीं है। इस वजह से ना तो जिन लोगों की दुकान या प्रॉपर्टीज पर असर हुआ था उनमें तो नाराजगी है। उनका सवाल सीधा है कि यार जब जगह खाली करवा दी गई थी तो रोड अब तक बना क्यों नहीं है, उनका क्या। मेरा भी यही सवाल है कि जब अतिक्रमण हटाया गया था तो उसके बाद रोड बड़ा करने का काम क्यों शुरू नहीं हुआ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अपना चिकल थाना के पास का कितना बड़ा एरिया है, वहाँ का जो अतिक्रमण है वो हटा दिया गया था। उसके बाद जालना रोड की क्या हालत है, वहाँ का भी अतिक्रमण हटा दिया गया था। और शहर में जो जो मेन रोड है ना वहाँ के सभी अतिक्रमण हटा दिए गए थे। लेकिन रस्ते बने हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बने। अब देखा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और हमारे शहर के रास्ते कब बड़े हो गए, या फिर ये बस अतिक्रमण हटाने का काम था उसके बाद रास्ते बनाने का काम बस कागज पर ही हुआ है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप मुझे बताएगा कि ऐसे शहर के कौन कौन से एरिया थे जहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है लेकिन वहाँ के रास्ते अब तक बनाए नहीं है या तो बेसिक वहाँ का काम भी शुरू नहीं हुआ है। DM की जगह इंस्टा पर RJ Adnan इस पेज पर एंड स्टेट

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़ा, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Tasech LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyaskram.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: सख्त जरूरत है।
1: दोस्तों डेवलपमेंट का नाम सुनते ही ना तो लगता है शहर अब बेहतर होगा, रोड बड़े हो गए, ट्रैफिक कम होगा और सफर आसान हो जाएगा, ऐसा महसूस होता है ना। तो कहते ना कि दिल के अरमा आंसू में बह जाते, कुछ ऐसी हालत अपने शहरवासियों की हो गए है। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ आरजे अदनान। अपने शहर में ना तो अतिक्रमण हटाया गया था, उसके बाद कहा गया था कि आप शहर के रास्ते बड़े हो जाएंगे, यानी कि अपना डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट कब होगा ये भी बड़ा सवाल है। पिछले साल बीड़ बाईपास, मुकुंदवाड़ी, पैठन गेट, स्टेशन रोड, जड़गांव रोड, जालना रोड, चिकलठाना एरिया के रोड बड़े करने थे, उस वजह से उन्होंने बुलडोजर चलाया था अतिक्रमण पर। ये बहुत अच्छा होगा, इलीगल जो प्रॉपर्टीज थी वो हटा दी गई थी। और उसके बाद हमें लगा था कि अब चलो एक्शन मोड पर महानगर पालिका आई है तो रास्ते भी बड़े हो जाएंगे और जल्द से जल्द अपने शहर के रास्ते हमें 60 मीटर तक बड़े नजर आएंगे। लेकिन एक साल पूरा बीत चुका है, ना रोड बड़े हुए, ना काम शुरू हुआ, ना लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस आगे बढ़ी। बस सबसे ज्यादा परेशानी हो गई है आम इंसान को ही और उन लोगों के जिनकी दुकानें गिर गई थी। उन्हें लग रहा था कि यार कुछ तो इसके बदले हमें पैसे मिलेंगे या रीडेवलपमेंट के लिए कुछ मदद होगी, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। और सिंपल सा सवाल एक ही खड़ा होता है कि यार अपने शहर के रास्ते बड़े कब हो गए ये। लेकिन तोड़फोड़ हुई बट डेवलपमेंट अब तक नजर नहीं आई, दूसरी भी डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही है। जहां देखो वहां पर बस अतिक्रमण गिरा हुआ नजर आ रहा है अपने शहर में, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। कब हो गए शहर के रास्ते बड़े, यही एक छत्रपति संभाजीनगर वासियों के दिल में सवाल है। जवाब महानगर पालिका को पता होगा तो देगा वो, नहीं तो बस चलता है, चलने तो बल्कि चल ही रहा है।
2: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs B.Tech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Chhatrapati Sambhajinagar.
4: Hi.

छत्रपति संभाजीनगर बन रहा है स्मार्ट सिटी, बट अपने एमएसएमई ना तो एकदम एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रही है, ऐसा हम सभी को नजर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड आप सुन रहे हो ऑल इज वेल, बट अपना शहर कुछ ऑल इज वेल नहीं है फिलहाल। कल शहर में आपने देखा होगा रात में क्या हुआ, बहुत सारे जगहों पर ना तो तूफान आया था, मतलब जगहों पर क्या अदनान, पूरे शहर में तूफान था। जी हाँ, रात तकरीबन 8, 9 या 10 बजे के करीब इन 3 घंटों में बहुत जोरों से हवाएं छूटी थी और सब तरफ बस हाहाकार मच गया था, अच्छी खासी बारिश भी हुई। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की, कल कैनोट में था मैं रात में 8:30 के करीब, और जैसे ही एक हवा का झोंका आया और उसी झोंके के साथ पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। मतलब देखा आपने, अपनी महावितरण ना तो कितना स्मार्ट वर्क करती है, कितना एकदम पंक्चुअल काम करती है, एक ही तरीके का बिजली कट करने का। हाँ, बिजली कट होने के बाद वापस बिजली ऑन करने के लिए उतने मेहनत से काम नहीं करती, ईमानदारी से काम बिल्कुल नहीं करती। 2 से 3 घंटे बाद अपने पूरे शहर में बिजली आई थी, मतलब पूरे शहर की बिजली एक ही तरीके से एक ही बटन में उन्होंने काट दी। अब वो काट दी या कट गई ये तो अलग है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जितने जल्दी तरीके से महावितरण बत्ती गुल करता है तो उतनी जल्दी तरीके से बत्ती ऑन क्यों नहीं करता। और ये भी एक सवाल उठता है कि इतनी सी बारिश आने के बाद या बस हवा आने के बाद शहर की पूरी बिजली क्यों बंद हो जाती है, और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन है ये तो नहीं पता। लेकिन 100 बात की एक बात, जितने स्मार्ट तरीके से और जितने फास्ट महावितरण काम करती है ना बत्ती गुल करने का, अगर बत्ती ऑन करने का काम भी उन्होंने इतने फास्ट किया ना, तो आई होप कि लोग उनके ना तो दिल से दुआएं देंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं यार अपने शहर की महावितरण एकदम स्मार्ट हो चुकी है और बत्ती जाने के बाद तुरंत वो ऑन कर देती है। लेकिन ये ऑन करने वाला सिस्टम उनके पास है ही नहीं, ऐसा मेरे को लगता है भाई, क्योंकि 2 से 3 घंटे तक कल शहर की लाइट चली गई थी, तो महावितरण वाले तब तक सो रहे थे शायद से। खैर आप क्या ही बोले, हमें भी आदत हो गई है इस चीज की ऐसा लगता है, और महावितरण को तो आदत है ही ऐसे बत्ती गुल करने की। खैर, स्टे ट्यून्ड।

मेरी एक इच्छा है यार, मुझे भी लोग वीआईपी जैसा ट्रीट करे। अब ये इच्छा मेरी और आपकी भी पूरी हो सकती है। सच्चे कह रहा हूँ, झूठ बिल्कुल मैं कहता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आरजे अदनान, और आपको मैं वीआईपी बनने का एक चांस दे रहा हूँ। सॉरी, मैं नहीं, मेटा आपको वीआईपी बनने का चांस दे सकता है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज करते हो तो वहां पर आपको वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके साथ आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे फैसिलिटीज, जिसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप वीआईपी हो। जैसे इंस्टाग्राम पर आपको यूज करने को मिलेगा एक्स्ट्रा क्रिएटर्स टूल्स, प्रोफाइल कस्टमाइजेशन, फेसबुक पर ऑडियंस इनसाइट्स और व्हाट्सएप पर प्रीमियम स्टिकर्स और एक्स्ट्रा चैट पिंस के ऑप्शंस, और एआई के शौकीन लोगों के लिए भी स्पेशल प्लान हो सकते हैं जहां एडवांस एआई टूल्स और वीडियो क्रिएशन जैसे फीचर आपको मिल सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी नॉर्मल चैटिंग, रील्स देखना और मीम्स शेयर करना वैसे ही फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपको डिजिटल दुनिया में वीआईपी एंट्री चाहिए तो फिर पॉकेट को थोड़ा प्रीमियम फील करवाना पड़ेगा। सो दोस्तों, आप कौन सा प्लान यूज करोगे, फ्री प्लान या फिर सब्सक्रिप्शन वाला प्लान, बताइए जरा। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, आता मानसिक आजार लपवायची नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
7: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
8: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
7: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
8: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: मेरे सैलरी की, यही तो सीन चल रहा है सभी एम्प्लॉइज का। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजे अदनान, और आपके जैसा मैं बिना तो मेरी सैलरी का इंतजार कर रहा हूँ, जो कि अब तक हुई नहीं है। क्या है ना, जब रेंट वाले भैया पहली तारीख नहीं भूलते, बिजली का बिल पहली तारीख नहीं भूलता, ईएमआई पहली तारीख नहीं भूलती, तो फिर कंपनीज अपनी पहली तारीख क्यों भूल जाते हैं? और इस वक्त ना तो फिर एम्प्लॉइज के दिल से निकलता है। कुछ कुछ कंपनियों में इतनी देर होती है कि 5 तारीख, 7 तारीख या फिर 10 तारीख को सैलरी करते हैं। मुझे क्या लगता है, ऐसा एक रूल आना चाहिए कि सभी कंपनियों ने अपनी सैलरी 1 तारीख मतलब 1 तारीख को ही देनी चाहिए। जब सैलरी का दिन होता है ना, तो एम्प्लॉय सोचता है कि आज तो भाई चाय नहीं कोल्ड कॉफी पीऊंगा, और जब सैलरी डिले होती है तो बंदा वापस से चाय पर ही आ जाता है। क्या ही बोले, अब इस गाने का आवाज में थोड़ा लाउड करूंगा ताकि ये बात मेरा एचआर भी सुन ले। बाकी तो आप बने रहना मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ, कुछ देर में लौट कर आऊंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

0: लाख का नुकसान हो गया भाई साहब, सो बच के रहिएगा बहन जी। आरजे अदनान तुम जो सुबह है इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: देखो यार, दिन दुगनी रात चौगनी ना तो तरक्की साइबर क्राइम आजकल कर रहा है और इससे बच के रहना हमें बहुत बहुत और बहुत ही जरूरी हो चुका है। लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ लोग गलती करते हैं और इस चक्कर के अंदर फंस जाते हैं। बात अपने शहर की है जहाँ पर एक महिला का घर का वॉशिंग मशीन खराब हो गया था। तो उन्होंने ना तो इंटरनेट पर उस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर सर्च किया और वहाँ पर उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर मिला। उसके बाद उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया और फिर सामने से एक बंदे ने कॉल रिसीव किया और कहा कि मैम आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर देंगे, हम आपको ना तो एक व्हाट्सएप पर फॉर्म भेज रहे, वो फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा और कन्फर्मेशन फीस के लिए ₹5 हमारे अकाउंट में डालिएगा जो हम आपको नंबर भेज रहे। उस महिला को लगा कि यार चलो मेरा काम तो अब हो गया और मेरी वॉशिंग मशीन ना तो फ्री में इसकी सर्विस होने वाली है। तो व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल वाला मैसेज आया, उन्होंने डाउनलोड किया, फॉर्म सबमिट किया और ₹5 सेंड कर दिए कन्फर्मेशन फीस के चक्कर में, और ₹5 के चक्कर में फिर 2 लाख उनके अकाउंट से कट हो गए। देखो भाई साहब, ये ना तो एक साइबर क्राइम का नया जुगाड़ सामने आया है जिसके अंदर हैकर जो क्राइम करने वाले होते हैं ना, ये आपके मोबाइल पर एक एपीके फाइल भेजते हैं और किसी ना किसी बहाने से आपको लूटने की कोशिश करते हैं और आपका पूरी मेहनत से कमाई हुई जो कमाई थी ना वो एक झटके में खाली हो सकती है आपके बैंक अकाउंट से। सो इन मोहतरमा के साथ तो ऐसा कुछ हो गया है। तो अगर आपके पास भी ना तो कोई एपीके फाइल आ रही हो तो उसको डाउनलोड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी कंपनी का अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लीजिएगा, किसी और वेबसाइट से मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और ये जो साइबर गुनहगार होते हैं ना तो ऐसे हेल्पलाइन नंबर के जरिए नए नए ट्रिक्स आजमाते हैं आप लोगों को फंसाने के लिए और आपकी मासूमियत यहीं पर मार खा जाती है और आपको लगता है कि यार ये काम की चीज है, बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो बंदा आपकी हेल्प नहीं आपका नुकसान करने के लिए खड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास कोई भी एपीके फाइल आ रही हो तो उसको डाउनलोड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर कोई फॉर्म आएगा तो पीडीएफ के जरिए होगा या तो कुछ लिंक होगी उस फॉर्म की, बट एपीके फाइल ये सबसे बड़ा आज के दौर में साइबर क्राइम के लिए यूज करने वाली ट्रिक हो चुकी है। सो एपीके फाइल बिल्कुल भी डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग है, कंपनियां है कह रही कि हमारी कंपनी कभी भी किसी भी कंफर्मेशन के लिए एपीके फाइल नहीं भेजती है। सो थोड़ा सतर्क रहिएगा, सुरक्षित आप रह जाओगे। जैसा इन मोहतरमा के साथ हो गया, ₹5 के चक्कर में 2 लाख बैंक से गायब हो गए, तो ऐसा आपके साथ ना हो। इस वजह से ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ भी हो रही हो तो उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर 1930 24/7, इसकी सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। इसी के साथ www.cybercrime.government.in ये वेबसाइट पर भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। सो बी सेफ, बी केयरफुल, डिजिटल दुनिया में डिजिटल चोरी से बचिएगा। सुनते रहिएगा

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9।
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

0: for the day.
1: All is well. A morning show, freshness light radio ka flow.
0: On MTM 90.8 FM. So, आज के इस शो के शुरुआत में मैंने आपको एक प्यारा सा सवाल पूछा था, एक पहेली पूछी थी.
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी.
0: पहेली फिर से एक बार दोहराता हूँ कि एक ऐसी चीज जो जितनी बढ़ती है उतना ही घटती है. ना इसे देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन ये सबके पास होती है. बताओ आखिर ये क्या है? तो इसका जवाब है उम्र. उम्र हमेशा बढ़ती है, लेकिन जीवन कम होता जाता है. उम्र को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन हर किसी के पास ये होती है. सो ये इसका सही जवाब है उम्र. और सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया था निखिल काले ने. सो कांग्रेचुलेशन निखिल जी, आज आप विनर बन चुके हो. आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा. सो निखिल जी ने एकदम सही जवाब दिया. आप भी ना तो मेरे सवालों के ऐसे जवाब देते रहिए, गिफ्ट जीतते रहिए, और बाकी तो यार फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM.

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति।
4: हाँ, यहाँ पर खाना खाने तो आपको जाना है लेकिन उसके पहले मेरी बात भी सुनना है। एग्जैक्टली अभी 10:52 का भी वक्त हो चुका है। आई होप कि अब तक आपका दिन तो शुरू हो चुका होगा और आप पहुंच गए होगे अपने ऑफिस में, अपने काम पर वगैरह। वैसे आज ना तो मंगलवार है, अभी मंगलवार आपको पूरा गुजारना है, मतलब मंडे का दुश्मन वाला दिन होता है मंगलवार। खैर, अब मेरा तो सब कुशल मंगल होने वाला है क्योंकि अब अपना आधा काम तो खत्म हो गया भाई। मैं तो चला अब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। बाय द वे दोस्तों, आज आपको मेरा शो कैसे लगा ये याद से बताना, DM करना इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, और अब वहाँ पर आए तो फॉलो भी कीजिएगा। बाकी शो के बाद भी मेरी और आपकी मुलाकातें, बातें कुछ यूं ही चलती रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और हाँ, आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ फरमाइशी हो गाने की, कुछ कहना हो या शो के बारे में कुछ बताना हो तो बिंदास आप ना व्हाट्सएप कीजिए यार, बेझिझक कीजिएगा। नंबर याद रखिए 9359320080। और तब तक के लिए ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे। एंड तब तक के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM। और ये अगला गाना आप ही के लिए सोनू निगम जी की आवाज़ में।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहां मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफ टॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
4: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
5: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन्स 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
4: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
5: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।
6: अब आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर, डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तो बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM University इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशंस 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक योर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज योर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाई 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एग्जाम 23rd May 2026। अप्लाई नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।
5: चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट RJ और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात।

की मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। सबसे पहले आप सभी को प्यारी से गुड इवनिंग। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गया होगा। पूरे दिन की भागदौड़, काम और तनाव और थकान के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का। और अगले कुछ मिनटों तक हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार गाने, ढेर सारी बातें और अच्छे सी साथ। शाम का ये समय हमेशा खास होता है। दिन धीरे धीरे ढलता है, शहर की रफ्तार थोड़ी कम होती है और दिल चाहता है बस कुछ अच्छे सुनने को। तो चाहे आप घर लौट रहे हो, दोस्तों के साथ हो या फिर अकेले अपनी चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे हो, हम हैं आपके साथ इस शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। आज के शो में होंगे आपके मन पसंदीदा गाने, कुछ दिलचस्प बातें, थोड़ी सी मुस्कान भी, क्योंकि हमारा मानना है कि एक अच्छी शाम पूरे दिन की थकान मिटा सकती है। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि म्यूजिक का ये सफर अभी भी शुरू हुआ है। सो फिर बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने काम, अपनी परेशानियों, अपने सपनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी दूसरों की मदद करना भूल जाते हैं। लेकिन सच कहे तो किसी की छोटी सी मदद भी उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी ला सकती है। जरूरी नहीं मदद हमेशा पैसों से ही हो। कभी किसी उदास इंसान को मुस्कान देना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना या मुश्किल समय में बस उसके साथ खड़े रहना भी बहुत बड़ी मदद होती है। आजकल लोग कहते हैं कि दुनिया में इंसानियत कम हो रही है, लेकिन जब कोई बिना मतलब के किसी की मदद करता है तो यकीन मानिए उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे ज़रूरत है आपकी मदद की तो एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि मदद करने से सिर्फ सामने वाले को नहीं अपने खुद के दिल को भी सुकून मिलता है। और याद रखिए दोस्तों, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। आज आप किसी का सहारा बनेंगे तो कल कोई आपका भी साथ जरूर देगा। इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आजकल हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन बिजी लाइफ में लोग अक्सर अपनी डाइट को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत आसान और हेल्दी टिप शेयर करना चाहूंगी। अगर आप सुबह अपने दिन की शुरुआत सोक्ड सोया चंक्स यानी भीगे हुए सोया चंक से करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। सोया चंक्स में भरपूर प्रोटीन होता है जो शरीर को ताकत देता है और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखता है। खासकर जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या फिटनेस पर ध्यान देते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। सुबह भीगे हुए सोया चंक्स खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती। और सबसे अच्छी बात, इसे तैयार करना भी बहुत आसान है। बस रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह हल्का सा उबाल कर या वैसे ही थोड़ा नमक, नींबू और मसाले के साथ खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज सही मात्रा में खाना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिए, हेल्दी लाइफ की शुरुआत कीजिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों कहते हैं ना, कुछ बातें शब्दों से नहीं सिर्फ आंखों से समझ जाती है और सच में नैनों की बातें अक्सर दिल तक सीधा असर कर जाती है। कभी किसी की आंखों में खुशी दिखती है तो कभी वही आंखें बिना कुछ कहे दर्द भी बयां कर देती है। कई बार लोग अपने जज्बात छुपा लेते हैं लेकिन उनकी आंखें सच बता देती है। प्यार हो, दोस्ती हो या कोई खास रिश्ता, नजरों का एक अलग ही कनेक्शन होता है। एक छोटी सी नजर, एक प्यारी सी मुस्कान और दिल की धड़कनें थोड़ा तेज हो जाती है। पुराने गानों से लेकर आज के रोमांटिक ट्रैक्स तक नैनों का जिक्र हमेशा खास रहा है क्योंकि आंखें सिर्फ देखती नहीं महसूस भी कराती है। और शायद यही वो वजह है कि जब कोई अपना प्यार से देखता है तो पूरा दिन अच्छा लगने लगता है। कई बार जो बातें हम बोल नहीं पाते वो हमारी आंखें बड़ी आसानी से कह देती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसकी आंखों में आपको अपनापन दिखता है तो उस रिश्ते की कद्र जरूर कीजिए क्योंकि सच्चे जज्बात हर किसी की नजरों में नहीं मिलते। एंड ऑफ कोर्स इसे संभाल के रखिए और सुनते रहिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट एमजीएम कैंपस एन6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, जिंदगी में हम हर दिन कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हंसते हुए दिखते हैं तो कुछ चुप रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई कहानी, कोई संघर्ष जरूर

लेकर चल रहा है। इसलिए जिंदगी में एम्पैथेटिक यानी संवेदनशील और समझदार होना बहुत जरूरी है। किसी की बात को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना भी एम्पैथी कहलाता है। कभी कभी एक छोटा सा आप ठीक है ना या किसी की परेशानी में उसका साथ देना किसी का पूरा दिन बदल सकता है। आज की तेज भागती दुनिया में लोग अक्सर जल्द जज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सामने वाले की परिस्थिति समझते हैं तो रिश्ते भी बेहतर बनने लगते हैं और दिलों में अपनापन भी बढ़ता है। एम्पैथी हमें सिखाती है कि हर इंसान सम्मान और समझ का हकदार है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला अंदर से किन मुश्किलों से गुजर रहा है। दोस्तों, मजबूत इंसान वही नहीं होता जो सिर्फ खुद को संभाले, बल्कि वो होता है जो दूसरों की भावनाओं की भी कदर करे। तो आइए आज खुद से एक छोटा सा वादा करें, हम लोगों को सिर्फ उनकी बातों से नहीं उनकी भावनाओं से भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इसी काइंडनेस वाली फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: एक सवाल पूछ लूं डायरेक्टली
0: जी,
1: फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूँ, एज इन कोई अफेयर हो, और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है इसलिए तुम उससे शादी कर रही हूँ।
2: एहसास की जो जुबान बन गए।
0: किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है?

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें छोटे बड़े फैसलों के सामने खड़ा कर देती है, कभी करियर को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर और कभी अपने सपनों को लेकर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन मेकर बनना बहुत जरूरी है। कई लोग फैसले लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन सच तो ये है कि हर सही फैसला पहले एक मुश्किल कदम की तरह लगता है। अगर हम हमेशा दूसरों के भरोसे रहेंगे तो शायद अपनी जिंदगी को अपने तरीके से कभी जी ही नहीं पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि हम खुद पर भरोसा करना सीखें। हाँ, हर फैसला परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर फैसला हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है और यही सीख इंसान को मजबूत बनाती है। एक अच्छा डिसीजन मेकर वही होता है जो सोच समझ कर फैसला ले, अपने दिल की सुने और मुश्किल समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखे। जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते, इसलिए डर से ज्यादा अपने सपनों पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद अपने फैसले लेना शुरू करते हैं तब भी असली कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपने फैसले खुद करूंगा या करूंगी, वो भी सोच समझ कर। और सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, हर बच्चा इस दुनिया में एक नई उम्मीद लेकर आता है। उसकी मुस्कान, उसके सपने, उसकी छोटी छोटी बातें घर को खुशियों से भर देती है। लेकिन सिर्फ प्यार ही नहीं, हर बच्चे की सही परवरिश भी बहुत जरूरी होती है। एक अच्छी अपब्रिंगिंग यानी सही परवरिश बच्चे के भविष्य की नींव होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं। अगर उन्हें प्यार, सम्मान और अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वही बातें आगे चलकर उनकी पहचान बनती है। आज के समय में बच्चों को सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही नहीं बल्कि सही सोच और अच्छे व्यवहार की भी जरूरत है। उन्हें ये सीखना जरूरी है कि दूसरों का सम्मान कैसे करें, मुश्किल समय में मजबूत कैसे रहे और इंसानियत की अहमियत क्या होती है। कई बार बिजी लाइफ में हम बच्चों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों, बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट महंगे खिलौने नहीं बल्कि अपने लोगों का समय और साथ होता है। एक बच्चा जब प्यार और समझदारी के माहौल में बड़ा होता है तो वो आत्मविश्वासी और अच्छा इंसान बनता है और यही एक बेहतर समाज की शुरुआत भी होती है। तो हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि हर बच्चे को प्यार, सुरक्षा और अच्छी परवरिश जरूर मिले। एंड ऑफ कोर्स इसी सोच के साथ सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन MGM 94.9 FM। साथ है तो बात है।

0: वो समय आ गया है जब हमें आपसे विदा लेनी होगी। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। लेकिन सच कहे, आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सफर कब शुरू हुआ और कब इतना खास बन गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है आज का हमारा शो, बातें और गाने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लेकर आए होंगे। अगर आपकी शाम थोड़ी सी बेहतर हुई हो तो हमारा साथ सफल हो गया। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढिए, अपने लोगों के साथ समय बिताइए और हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। कल एक नई सुबह फिर नए मौके लेकर आएगी, इसीलिए बीती बातों की चिंता छोड़कर आने वाले अच्छे पलों का इंतजार कीजिए। आपका प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी तरह जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना मन पसंदीदा शो दिल से। और ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM campus in 6th Chhatrapati Sambhajinagar.

वक्त हो गया है आज के एक बेहतरीन गाने का किस्सा जानने का। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM और गानों के किस्सों में आज हम जानेंगे इस गाने के बारे में।

ब्रह्मचारी इस फिल्म से गाना है। मोहम्मद रफी और शम्मी कपूर जी की दोस्ती काफी गहरी थी। वही शम्मी कपूर अपने फिल्मों और गानों को लेकर काफी सोच विचार करते थे, गाना कैसी फिल्माया जाएगा, कौन गाएगा और बहुत कुछ। ऐसे ही ना तो मोहम्मद रफी साहब का एक लोकप्रिय गाना था दिल के झरोखों में, जिसे शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था। उसके लिए शम्मी जी ने रफी साहब के

ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि रफी अगर एक सांस में वो इस गाने का मुखड़ा और अंतरा गा लेंगे तो उनके लिए तारीफों के पुल बन जाएंगे। ये गाना काफी मुश्किल था, लेकिन जब रफी साहब ने इसकी रिकॉर्डिंग की तो हर कोई हैरान हो गया। रफी साहब ने इस गाने को एक टेक में रिकॉर्ड किया था, बस फिर क्या, आज भी ये गाना एक क्लासिक हिट है। और ये गाना सुनने के बाद समझ में आता है कि कितने लेजेंडरी सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब। इतना मुश्किल गाना बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। तो चलिए फिर यही गाना अब हम एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ब्रह्मचारी इस फिल्म से। ऐसे ही गानों के किस्से हम हर दिन जानेंगे अपने इस शो में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

यार एक बात बताना, अगर किसी को बोला जाए कि थोड़ी तकलीफ उठा लो, बाद में फायदा ही होगा, और फिर एक साल तक कोई फायदा नजर नहीं आए तो गुस्सा तो आएगा ना। फिलहाल अपने शहर में ये सब चालू है। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम एंड छत्रपति संभाजीनगर में भी ऐसे कुछ हाल हो चुके हैं। पिछले साल ना तो शहर के 5 बड़े रास्तों से बहुत बड़ा सा अतिक्रमण हटाया गया था, हम सभी को पता है। फिर लोगों ने सोचा था कि यार अब ट्रैफिक से हमें मुक्ति मिलेगी और अब हम आजाद तरीके से गाड़ी चलाएंगे विदाउट किसी हेजिटेशन के। लेकिन अब एक साल हो गया है और रोड बड़ा करने का काम अब तक शुरू हुआ ही नहीं है। इस वजह से ना तो जिन लोगों की दुकान या प्रॉपर्टीज पर असर हुआ था उनमें तो नाराजगी है। उनका सवाल सीधा है कि यार जब जगह खाली करवा दी गई थी तो रोड अब तक बना क्यों नहीं है। उनका क्या, मेरा भी यही सवाल है कि जब अतिक्रमण हटाया गया था तो उसके बाद रोड बड़ा करने का काम क्यों शुरू नहीं हुआ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अपना चिकल थाना के पास का कितना बड़ा एरिया है, वहाँ का जो अतिक्रमण है वो हटा दिया गया था। उसके बाद जालना रोड की क्या हालत है, वहाँ का भी अतिक्रमण हटा दिया गया था। और शहर में जो जो मेन रोड है ना वहाँ के सभी अतिक्रमण हटा दिए गए थे। लेकिन रस्ते बने हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बने। अब देखा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और हमारे शहर के रास्ते कब बड़े हो गए, या फिर ये बस अतिक्रमण हटाने का काम था उसके बाद रास्ते बनाने का काम बस कागज पर ही हुआ है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप मुझे बताइएगा कि ऐसे शहर के कौन कौन से एरिया है जहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है लेकिन वहाँ के रास्ते अब तक बनाए नहीं है या तो बेसिक वहाँ का काम भी शुरू नहीं हुआ है। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड।

डेवलपमेंट का नाम सुनते ही ना तो लगता है शहर अब बेहतर होगा, रोड बड़े हो गए, ट्रैफिक कम होगा और सफर आसान हो जाएगा, ऐसा महसूस होता है ना। तो कहते ना कि दिल के अरमा आंसू में बह जाते, कुछ ऐसी हालत अपने शहरवासियों की हो गए है। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजे अदनान। अपने शहर में ना तो अतिक्रमण हटाया गया था, उसके बाद कहा गया था कि आप शहर के रास्ते बड़े हो जाएंगे, यानी कि अपना डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट कब होगा ये भी बड़ा सवाल है। पिछले साल बीड़ बाईपास, मुकुंदवाड़ी, पैठन गेट, स्टेशन रोड, जड़गांव रोड, जालना रोड, चिकलठाना एरिया की रोड बड़े करने थे, उस वजह से उन्होंने बुलडोजर चलाया था अतिक्रमण पर। ये बहुत अच्छा होगा, इल्लीगल जो प्रॉपर्टीज थी वो हटा दी गई थी। और उसके बाद हमें लगा था कि अब चलो एक्शन मोड पर महानगर पालिका आई है तो रास्ते भी बड़े हो जाएंगे और जल्द से जल्द अपने शहर के रास्ते हमें 60 मीटर तक बड़े नजर आएंगे। लेकिन एक साल पूरा बीत चुका है, ना रोड बड़े हुए, ना काम शुरू हुआ, ना लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस आगे बढ़ी। बस सबसे ज्यादा परेशानी हो गई है आम इंसान को ही और उन लोगों के जिनकी दुकानें गिर गई थी। उन्हें लग रहा था कि यार कुछ तो इसके बदले हमें पैसे मिलेंगे या रीडेवलपमेंट के लिए कुछ मदद होगी, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। और सिंपल सा सवाल एक ही खड़ा होता है कि यार अपने शहर के रास्ते बड़े कब हो गए ये। लेकिन तोड़फोड़ हुई बट डेवलपमेंट अब तक नजर नहीं आई, दूसरी भी डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही है। जहां देखो वहां पर बस अतिक्रमण गिरा हुआ नजर आ रहा है अपने शहर में, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। कब हो गए शहर के रास्ते बड़े, यही एक छत्रपति संभाजीनगर वासियों के दिल में सवाल है। जवाब महानगर पालिका को पता होगा तो देगा वो, नहीं तो बस चलता है, चलने तो बल्कि चल ही रहा है।

छत्रपति संभाजी नगर बन रहा है स्मार्ट सिटी, बट अपने एमएसएमई ना तो एकदम एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रही है, ऐसा हम सभी को नजर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड आप सुन रहे हो ऑल इज वेल, बट अपना शहर कुछ ऑल इज वेल नहीं है फिलहाल। कल शहर में आपने देखा होगा रात में क्या हुआ, बहुत सारे जगहों पर ना तो तूफान आया था, मतलब जगहों पर क्या अदनान, पूरे शहर में तूफान था। जी हाँ, रात तकरीबन 8, 9 या 10 बजे के करीब इन 3 घंटों में बहुत जोरों से हवाएं छूटी थी और सब तरफ बस हाहाकार मच गया था, अच्छी खासी बारिश भी हुई। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की, कल कैनोट में था मैं रात में 8:30 के करीब, और जैसे ही एक हवा का झोंका आया और उसी झोंके के साथ पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। मतलब देखा आपने, अपनी महावितरण ना तो कितना स्मार्ट वर्क करती है, कितना एकदम पंक्चुअल काम करती है, एक ही तरीके का बिजली कट करने का। हाँ, बिजली कट होने के बाद वापस बिजली ऑन करने के लिए उतने मेहनत से काम नहीं करती, ईमानदारी से काम बिल्कुल नहीं करती। 2 से 3 घंटे बाद अपने पूरे शहर में बिजली आई थी, मतलब पूरे शहर की बिजली एक ही तरीके से एक ही बटन में उन्होंने काट दी। अब वो काट दी या कट गई ये तो अलग है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जितने जल्दी तरीके से महावितरण बत्ती गुल करता है तो उतनी जल्दी तरीके से बत्ती ऑन क्यों नहीं करता। और ये भी एक सवाल उठता है कि इतनी सी बारिश आने के बाद या बस हवा आने के बाद शहर की पूरी बिजली क्यों बंद हो जाती है और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन है ये तो नहीं पता। लेकिन 100 बात की एक बात, जितने स्मार्ट तरीके से और जितने फास्ट महावितरण काम करती है ना बत्ती गुल करने का, अगर बत्ती ऑन करने का काम भी उन्होंने इतने फास्ट किया ना, तो आई होप कि लोग उनके ना तो दिल से दुआएं देंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं यार अपने शहर की महावितरण एकदम स्मार्ट हो चुकी है और बत्ती जाने के बाद तुरंत वो ऑन कर देती है। लेकिन ये ऑन करने वाला सिस्टम उनके पास है ही नहीं, ऐसा मेरे को लगता है भाई, क्योंकि 2 से 3 घंटे तक कल शहर की लाइट चली गई थी, तो महावितरण वाले तब तक सो रहे थे शायद से। खैर आप क्या ही बोले, हमें भी आदत हो गई है इस चीज की ऐसा लगता है, और महावितरण को तो आदत है ही ऐसे बत्ती गुल करने की। खैर स्टे ट्यून्ड।

मेरे सैलरी की, यही तो सीन चल रहा है सभी एम्प्लॉइज का। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ आरजे अदनान, और आपके जैसा मैं भी ना तो मेरी सैलरी का इंतजार कर रहा हूँ, जो कि अब तक हुई नहीं है। क्या है ना, जब रेंट वाले भैया पहली तारीख नहीं भूलते, बिजली का बिल पहली तारीख नहीं भूलता, ईएमआई पहली तारीख नहीं भूलती, तो फिर कंपनीज अपनी पहली तारीख क्यों भूल जाते हैं? और इस वक्त ना तो फिर एम्प्लॉइज के दिल से निकलता है। कुछ कुछ कंपनियों में इतनी देर होती है कि 5 तारीख, 7 तारीख या फिर 10 तारीख को सैलरी करते हैं। मुझे क्या लगता है, ऐसा एक रूल आना चाहिए कि सभी कंपनियों ने अपनी सैलरी 1 तारीख, मतलब 1 तारीख को ही देनी चाहिए। जब सैलरी का दिन होता है ना, तो एम्प्लॉय सोचता है कि आज तो भाई चाय नहीं कोल्ड कॉफी पीऊंगा, और जब सैलरी डिले होती है तो बंदा वापस से चाय पर ही आ जाता है। क्या ही बोले, अब इस गाने का आवाज मैं थोड़ा लाउड करूंगा ताकि ये बात मेरा एचआर भी सुन ले। बाकी तो आप बने रहना मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ, कुछ देर में लौट कर आऊंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: जैसे वो सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

मेरी एक इच्छा है यार, मुझे भी लोग वीआईपी जैसा ट्रीट करे। अब ये इच्छा मेरी और आपकी भी पूरी हो सकती है। सच्चे कह रहा हूँ, झूठ बिल्कुल मैं कहता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आरजे अदनान, और आपको मैं वीआईपी बनने का एक चांस दे रहा हूँ। सॉरी, मैं नहीं, मेटा आपको वीआईपी बनने का चांस दे सकता है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज करते हो तो वहां पर आपको वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके साथ आपको मिलने वाले बहुत सारे फैसिलिटीज, जिसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप वीआईपी हो। जैसे इंस्टाग्राम पर आपको यूज करने को मिलेगा एक्स्ट्रा क्रिएटर्स टूल्स, प्रोफाइल कस्टमाइजेशन, फेसबुक पर ऑडियंस इनसाइट्स और व्हाट्सएप पर प्रीमियम स्टिकर्स और एक्स्ट्रा चैट पिंस के ऑप्शंस, और एआई के शौकीन लोगों के लिए भी स्पेशल प्लान हो सकते हैं जहां एडवांस एआई टूल्स और वीडियो क्रिएशन जैसे फीचर आपको मिल सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी नॉर्मल चैटिंग, रील्स देखना और मीम्स शेयर करना वैसे ही फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपको डिजिटल दुनिया में वीआईपी एंट्री चाहिए तो फिर पॉकेट को थोड़ा प्रीमियम फील करवाना पड़ेगा। सो दोस्तों, आप कौन सा प्लान यूज करोगे, फ्री प्लान या फिर सब्सक्रिप्शन वाला प्लान, बताइए जरा। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम साथ है तो बात है।
1: एक लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर लगे रहते हैं ताकि एक दिन सुकून से रह पाए। इस सफर में न जाने हम क्या क्या झेलते हैं, क्या क्या खो देते हैं। फिर जब एक दिन हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं तो जमाना हमारी पीठ थपथपाते हुए कहता है, आखिर तुम बड़े हो ही गए। यानी कि एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली। और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली, हमने जिंदगी संभाल ली।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम साथ है तो बात है।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
0: एडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171453 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhaji Nagar.

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।
2: आई आई या।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94 Native FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94 Native FM, साथ है तो बात है।

0: कहना है
1: मुझे भी कुछ कहना है
0: मुझे कुछ कहना है
1: मुझे भी कुछ कहना है
0: पहले तुम
1: पहले तुम
0: पहले तुम
1: पहले तुम
0: पहले तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।